सिदक सबर की लड़ाई, जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादों वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लिआंदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, इत्थों तक आखिया कि तुहानू पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए। बड़ी कोशिश की इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्दियां विच सौण वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उमरां भी बड़ियां छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, दराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वह भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे? आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति, गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे काकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है,

ते फतवा भी की लाया नीहां दे विचण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विचण मार दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
2: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ।
1: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ, ਓਕਲੈਂਡ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 Telephone 01274-488-935।

सारे के सारे इस देश के वासी लोग हमारे, जवान बूढ़े बच्चे प्यारे, आ जाओ सारे हमारे। और इधर भी तो वो देखो देखो, उस हुजूम की गर्दिश, जनों की बारिश में ऐठा डट

मिट्टी का डर हर दिल में डगर में नजर में जिगर में ऐसी लहर जैसे शहर हर पहर इकट्ठा शहर बेताज बादशाह मन शहनशाह।

झांझोल, समाज की सारी लंबी रस्सी, समाज की सारी लंबी रस्सी खींचा तानी तानाशाही, देश के नेता नेताशाही, हाँ हाँ ही लापरवाही।

हुआ लट्टू, लोग लोटपोट, ऐसा धमाका जैसे विस्फोट, झांके कैमरे, चमके फ्लैश, मारे आंखें करते ऐश। जीता जॉनी, ऐसी जीत, किसी के पल्ले ना ऐसी सीट। गई

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: Looking ahead to the weekend, here's what's happening. First, in Bradford, Michael Flatley's Lord of the Dance 30th anniversary tour arrives at Bradford Live, with performances running through the weekend. Also in the Bradford district, the Glenn Miller Orchestra comes to St George's Hall on the 13th of June, bringing the sound of the big band era back to the city. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, showcasing contemporary analogue photography. And still in Halifax, Peppa Pig's Big Family Show comes to the Victoria Theatre on the 13th and 14th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena across the weekend. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry, inspired by the remarkable life of Halifax landowner Anne Lister. Over in East Lancashire, The Journey 21st Anniversary Choral Evensong takes place at Blackburn Cathedral, celebrating the choir's anniversary. In Derby, events continue as part of the city's 50-50 celebrations, marking Derby's international partnerships and cultural links. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, is at Milton Keynes Theatre from the 8th to the 13th of June. And finally, in West London, the London Festival of Architecture continues across June, with events taking place in Hammersmith and across West London. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: लिए जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू समान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
0: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: पुराना सुना बेचना है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464।

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज़ रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहतो भरा खुलूस की अता गहराइयों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाब ख़जानों के साथ आपको आज का ये खूबसूरत धुंधला धुंधला सा दिन, रिम झिम करती हुई बारिश और जुमा का ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमेशा आपकी और आपके चहेतों की और आपसे जुड़े हर फर्द की हिफाजत फरमाए और हमेशा आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए और आपको बेशुमार सुबह जो हैं वो ज़िंदगी और खुशहाली और अल्लाह की रहमतों से नसीब हों। आपके अल्लाह पाक हर मुश्किल को दूर फरमाए और आपके दीनी और दुनियावी मामलात में आसानियां पैदा करे अल्लाह पाक, और हर किस्म की नज़र बद और दूसरों के शर से हमेशा हमेशा महफूज रखे, आमीन। दुआ है कि मालिक कायनात आपकी ज़िंदगी का आने वाला हर एक पल, हर एक लम्हा खुशियों का पैगाम लेकर आए और रहमतों और बरकतों से लबरेज हो। ज़िंदगी की तमाम खुशगवार बहारें आपको हमेशा मुयस्सर हों, दुनिया और आखरत में इज्जत वकार मिले, हमेशा अल्लाह की रहमतों के साए में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा ना करे अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है, तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामला और आजला अता फरमाए, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए और आपकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन।

रहे क्या ये बारिश जो है आशिक है हमारी बहुत ही खूबसूरत दिन है जुमा का दिन है और इस्लामी साल का आज आखिरी जुमा भी है आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ है कि आने वाला साल इस्लामी साल हम सब के लिए रहमतों और बरकतों से भरपूर हो आप सुन रहे हैं शहनाज मंसूर को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे आप सुन रहे हैं कालदल डेर मोवेस्ट योक्षिर के इर्द गिर्द के इलाकों में इसके अलावा डीएबी के जरिए आप हमें सुनते हैं ब्रेडफोर्ड इल्कली स्किप्टन लीड्स हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स और इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जैसे कि ऐप है और वेबसाइट है ऐप जो है उसे अभी डाउनलोड कर सकते हैं और www.sunriseradio.fm पे भी आप जाकर सनराइज की नशियात को सुन सकते हैं 24 घंटे शहनाज मंसूर हूँ और आपके साथ साथ हूँ 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ यादों का सफ़र है और आप हमारे हम सफ़र बन रहे हैं आपको खुश आमदीद कहते हैं वेलकम करते हैं जी आयनु कहते हैं आपसे बातें भी होंगी मुलाकातें भी होंगी आपका हाल भी जानना चाहेंगे और हमारा हाल आपकी दुआओं से तो आप सुन ही रहे हैं आपको हमारी आवाज़ से पता ही चल गया होगा वैसे इस थोड़ी बड़ी जो आजकल मौसम के लिहाज से सभी लोग जो है इसमें मुबतला है कोई बात नहीं ऐसी बड़ी कोई बात नहीं है बस थोड़ा बहुत जुकाम ही है तो आपसे मिलेंगे भी बातें भी करेंगे और इस प्रोग्राम को हमेशा की तरह खूबसूरत बनाएंगे आपके संग संग बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब और नहीं उससे पहले ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के फौरन बाद आपको सुनाएंगे हिट ऑफ द आवर क्योंकि ब्रेक का टाइम है टाइम भी बता देते हैं अपनी घड़ियों को देख ले चेक कर लें कि आपकी घड़ियाँ भी क्या कह रही हैं वही टाइम है उन पर भी जो कि हमारे सनराइज की घड़ियाँ बता रही हैं हमारे सनराइज की घड़ियों पे जो टाइम है वो है यूके का जो टाइम 11:14 बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद

सूर्या अब यही पुकारे। आबालमा नदिया के किनारे बहुत ही खूबसूरत दो गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे, और आप हमें सुन रहे हैं www.sunriseradio.fm पे पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप डी ए पी के जरिए सुनते हैं हमें ब्रैडफोर्ड, कीसले, इल्कलीस, किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन केन्स में। 100.6 FM पे आप सुनते हैं हमें अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, और मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ अब से लेकर दोपहर 2 बजे तक। पुरानी सदाबहार गीतों का प्रोग्राम होता है, पुरानी यादें होती हैं और आप हमारे हम सफ़र होते हैं। आज भी आपका साथ मिल रहा है, आपका प्यार और आपकी दुआएं हमें मिल रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो कि हमेशा हमारा साथ निभाते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा खूबसूरत और हसीन बनाते हैं। आपके साथ साथ ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है और आपके साथ साथ चलना ही हमें अच्छा लगता है। हमें उम्मीद और यकीन है कि आज भी हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे और आपकी दुआएं और आपका प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ, दिल का भंवर करे पुकार आप तमाम के नाम।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दाला, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारी हूँ सदा। बहुत ही खूबसूरत दो गाना मुकेश और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunrise.fm पे आप हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर दो बजे तक। पुराने सदाबहार गीतों के साथ यादों का सफ़र है, आप हमारे हम सफ़र हैं हमेशा की तरह। आपको अपने साथ पाकर बेहद बेहद खुशी हो रही है और आपके संग संग ही आगे बढ़ेंगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आपकी यादों के साथ और अपने यादों भरे गीतों के साथ। आपकी डेडिकेशंस भी होंगी और आपके पैगामात भी हम जो है वह आपके चेहरे तक पहुंचाते रहेंगे दौरान प्रोग्राम। अगर आप भी प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें हमारे गीतों के साथ, अपने नाम को या अपनों के नाम को जोड़ना चाहें तो हमारा नंबर है 01274306666। और अगर आप किसी को जुमा की मुबारकबाद देना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं या किसी की एनिवर्सरी है तो आप उसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274306666 पे। हम कोशिश करेंगे कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक पेश कर सकें। अगर आपकी फरमाइश पूरी ना कर सकें तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके पसंदीदा आवाज़ों को, आपके मनपसंद गुलकार जो है उनकी आवाज़ में हम गीत आपके नाम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का। मिस्टर मिसेज हुसैन आपका मैसेज मिला, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। और आपने तमाम सामीन को जुमा की मुबारकबाद पेश की है और सनराइज़ की टीम को भी अस्सलाम वालेकुम कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। और आपकी आपको भी जुमा की बहुत बहुत मुबारक। और इसके अलावा इसमें ना जी आपका मैसेज मिला है, ना जी आपका भी मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम बहनों का जो कि हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखती हैं और हमारे सामीन को भी दुआओं से नवाजती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जानिब से सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी बात हुई थी हमारे प्यारे से भाई अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से, आप भी प्रोग्राम को हमेशा की तरह सुन रहे हैं और आप गीतों को इंजॉय भी कर रहे हैं और हमारे साथ साथ अपनी यादों को हमारे साथ साथ आप भी ताज़ा करते हैं और आपको अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप गीतों को इंजॉय करते हैं, हमारी चॉइस को आप पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप ही के लिए थे जो गीत हमने पेश किए और आने वाले गीत भी आप ही के लिए होंगे। आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को, आपकी तमाम टीम को, सनराइज़ की तमाम टीम को जुमा की बहुत बहुत मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। आपने ढेरों दुआएं और सलामत की दुआएं भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, जी हाँ ना भी ऐसा ही चाहिए जिसे प्यार करो जान लुटा के करो, जी हाँ जी दिलो जान से करो। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप तमाम सामीन के लिए हमने पेश किया था। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे महफिल में शिरकत कर रहे हैं और हमारी यादों की गाड़ी में हमारे साथ साथ सवार हो चुके हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने भाई तारिक जुल्फी भाई, आपका बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आप हमेशा ढेरों दुआओं के साथ आते हैं और अपने दोस्तों को, अपने चहेतों को बहुत बहुत दिल, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ याद करते हैं और उनके लिए सलाम आपने भेजा है अपने तमाम दोस्तों के लिए जो कि इस वक्त सनराइज़ की नशरात को सुन रहे हैं, सनराइज़ की टीम को भी और हमारे तमाम सामीन को भी आपने दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए गीत आएगा अगले घंटे में याद अफ्रीका और प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजरा जी आप भी कॉल कर रही थी लेकिन आपकी कॉल मिस हो गई। मैं चाहती हूँ अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर कीजिएगा दोबारा से फ़ोन, इंशाल्लाह आपसे बात ज़रूर होगी। बहुत अच्छा लगता है हमें आपसे बातें करना। इसके अलावा हमारी बात हुई हमारे छोटे भाई वाजिद भाई आपसे भी हुडर्सफील्ड में, आप भी हमें सुन रहे हैं हमेशा की तरह बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आप आते हैं और अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम सनराइज़ की टीम को और हम सबको ढेर दुआएं दे के जाते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मुखलिस हैं सनराइज़ के और सभी के लिए ढेरों दुआएं हमेशा आप देते हैं और आप भी हमेशा दुआओं के मुंतज़िर रहते हैं और हमसे हमेशा आपकी ये इल्तिजा रहती है कि हम भी अपने सामीन से ये गुजारिश करें कि वो आपके लिए दुआएं करें। हमेशा हम तो आपके लिए दुआएं करते ही हैं तो मुझे यकीन है कि हमारे सामीन भी आपको दुआ में ज़रूर याद करते होंगे क्योंकि आप हमारे जो कहते हैं ना कि छोटे सनराइज़ के छोटे बेटे हैं। बचपन से आप हमें सुनते आ रहे हैं, हमेशा सुनते हैं और हमेशा हमें दुआ से नवाजते हैं और हमेशा हाजिरी भी लगाते हैं। अच्छा लगता है आपसे बातें करना और आपकी तबीयत हमेशा कुछ नासाज सी रहती है तो इसलिए हम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपकी जो होती जी इल्तिजा जो होती है ना, आपकी आवाज़ हमें आपको देखा तो नहीं लेकिन आप जिस प्यार और मोहब्बत के साथ हमें दुआएं देते हैं और हमसे गुजारिश करते हैं कि आपके लिए दुआ करें तो यकीन मानिए खुद ब खुद आपके लिए हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं वो अल्लाह पाक वो जल्दी से पास हो जाए, वो जल्दी से गुजर जाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह पाक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे साथ साथ हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और हमें मैसेज मिला था, जी हाँ जी किसका, नौशीन आपका भी, आप भी सुन रही हैं, आपने कहा कि तमाम सामीन को भी और सनराइज़ की टीम को आपने दुआएं भेजी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा है और जुमा की मुबारकबाद भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब और ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, यकीन आप तमाम को अच्छा लगेगा। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने के गम भुला बैठे।

0: दो घड़ी वो जो पासा बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे। होता है यूं ही होता है, जब अपने अपने करीब होते हैं तो हम जमाने को भूल जाते हैं, बस वही वही नजर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत था, दो गाना था जिसे आपने सुना, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। आप ही के लिए था मिस्टर मिसेस हुसैन, आप इंजॉय कर रहे हैं गीतों को, बहुत अच्छी बात है। अब आपको टाइम बताते हैं,
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो 11:45। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: आर यू बेस्ड इन द यूके? आर यू अ कंटेंट creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect and succeed.
4: The Asian Station, Sunrise Radio.
5: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

प्यारे प्यारे ये नज़ारे और निखार है हर कहीं। जी हाँ जी, आप सब हमारे लिए बहुत प्यारे हैं और आपकी दुआएं और आपका प्यार जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब आपसे बातें होती हैं तो हम बिल्कुल ठीक ठाक लगता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही अच्छे से भाई हैं हीरा खान जी, आपसे बात हुई हमेशा की तरह ढेरों दुआओं के साथ। आपने अपने दोस्तों को याद किया है, सभी को सलाम भेजा है और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। उनके लिए गीत अगले घंटे में हम ज़रूर आपकी जानिब से पेश करेंगे। और हमारी बात हुई हमारी प्यारी सी बहन दीपा जी आपसे भी, आप प्रोग्राम सुन रही हैं लेकिन आपको बाहर जाना था, लेकिन आपने हमसे बात करीब किए बगैर नहीं जाना था, आपने बहुत कोशिश की, आखिरकार आपसे बात हो ही गई। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपके प्यार का और आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आपने हमारी सेहत का जो है वो अंदाज़ा लगा ही लिया है फ़ोन पे, हमारी आवाज़ से कि कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो आपने जो हमें वो टोटका बताया है ज़रूर करेंगे। वैसे भी तो वो कहते हैं ना कि अदरक की चाय पियो, काली मिर्चें डालकर ये वो कावा वगैरह, वो तो हम करते ही हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ुकाम इतने में भी खुदा का शुक्र है कि अल्लाह पाक बड़ी बड़ी बीमारियों से

बचाए और आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमेशा दुआओं से और प्यार से हमें नवाजती हैं और सभी के लिए दुआएं करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहनों तक जो है हम आपका पैगाम भी पहुँचाएँगे और आपके लिए गीत भी लगाएंगे अगले घंटे में। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप तमाम के लिए, सामीन के लिए जो भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे हम सफ़र हैं, आप सब के लिए एक डाल पे तोता बोले और एक डाल पे मैना। दूर दूर हैं फिर भी प्यार तो हम सबको है ना, बोलो है ना। हाँ जी है, हमें भी और आपको भी।

0: कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदार हो जाना, कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदार हो जाना, कहाँ से सीखा है तुमने बड़ा बेजार हो जाना। कभी अपना बना लेना कभी दामन छुड़ा लेना, कभी आसान कभी मुश्किल कभी दुश्वार हो जाना। कभी मिलकर रकीबों से हमारे हाल पर हंसना, कभी मिलकर रकीबों से हमारे हाल पर हंसना, कभी मेरी मोहब्बत में गुलो गुलजार हो जाना।
1: एक डाल पर तोता बोले।
0: जी हाँ जी, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी अल्लाह ताची की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गाना। और अब है कि ख़बरों का वक्त करीब आन पहुँचा है, आप सुनेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ और उसके बाद हम आपसे आन मिलेंगे दोबारा प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, साथ निभाइएगा। मिलते हैं अगले घंटे में।

तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। जी हाँ जी, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आन पहुँचे हैं। आपका खैर मकदम है। जी हाँ, ये नुकुश आमदीद, वेलकम, गुड आफ्टरनून। मुझे महसूस हुआ कि जब हम कमर्शियल्स लगा रहे थे या हमने वो ब्रेक ली, तो उसमें कुछ गड़बड़ थी, आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। बहुत ट्राई किया तो अब हमें सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि अब के बार हमारी जो जिंगल्स हैं वो प्ले होती हैं कि ये या नहीं। हम आपको हिट ऑफ द आवर सुनवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हिट ऑफ द आवर के बाद। जी नहीं, अभी भी लगता है कि हमारी जो है ना जिंगल्स, उनमें कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, यही टॉप द आवर हम आपको सुनवा देते हैं।

0: जिए तो जिए कैसे बिना के अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे और मैं हूँ शहनाज मंसूर 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप हमें सुनते हैं कॉल्टडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके में 100.6 FM पे। DAB के जरिए आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। और मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ दोपहर 2 बजे तक। पहले घंटे में आपने बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ हमारा साथ निभाया और हमारे साथ यादों के सफ़र में, हमारी यादों की गाड़ी में आप सवार हुए। आपको अपने साथ पाकर हमेशा की तरह बहुत खुशी हुई और माजत चाहूँगी कि महबूब इलाही भाई आपकी कॉल मिस हो गई। आपने 2 बार ट्राई किया था लेकिन मसरूफी की वजह से और कुछ यहाँ पे सिस्टम में कुछ गड़बड़ थी, उसे सॉर्ट आउट करना था, जिसकी वजह से आपकी कॉल भी मिस हो गई और हाजरा जी आपकी कॉल भी दोबारा से मिस हो गई। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। जी हाँ जी, 2 बजे तक हम यहाँ पर हैं। आपके पास अगर वक्त है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे बातें भी होगी। अब मुझे लगता है कि ये जो गड़बड़ थी वो मामला जो है सेट कर लिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है कि क्या हो रहा था हमारे साथ। तो इंशाल्लाह अब बाकी का प्रोग्राम जो है वो ठीक ठाक और स्मूथली आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो हिट ऑफ द आवर तो आपने सुन लिया, आप आपको टाइम बताते हैं और फिर मिलते हैं उसके बाद आपकी डेडिकेशन का सिलसिला और आपके पैगाम का सिलसिला भी हम जारी करेंगे।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 11 minutes past 12, 11 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर। गुड आफ्टरनून।

जी हाँ जी, जैसा हमने कहा था कि आपकी डेडिकेशंस का सिलसिला हम शुरू करेंगे, तो हमें आज सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी हमारे भाई अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। आपने आपका बेहद शुक्रिया, हमेशा की तरह आपका साथ मिला, आपकी दुआएं हमने पाई और आपने अपने तमाम दोस्तों को जो इस वक्त सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं उन तमाम को आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है और उनके लिए गीत भी सुनना चाहा है। ये आने वाला गीत आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम, हमारी जानिब से हमारे तमाम सामीन के नाम होगा और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी अपने प्यारे से भाई तारिक भाई जुल्फी भाई आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी। आपने सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है। आपके दोस्तों में शामिल हैं बाबा जानी हैं, मलक इसहाक हैं, हीरा खान जी हैं, महबूब इलाही हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, अयूब चौहान जो है मैनचेस्टर में है, वाजिद भाई हरिसफील्ड में है, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, सुल्तान महमूद कराची वाले हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई बर्लिन में है, नवीद राना है, चौधरी वलायत खान हैं, चौधरी फरियाद खान हैं, तारिक भट हैं, क्यानी मुदसर हैं, परवेज़ खान और आमिर शहजाद के लिए। तो ऐसा है कि गीत हम आपको सुनाएंगे ब्रेक के बाद, उससे पहले हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो गीत होगा वो आप तमाम साथियों के लिए होगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

ना मुकद्दर बिगड़े हुए एक जमाना बीत गया। मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में ये बेहद खूबसूरत गीत आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunrisejo.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके हम सफ़र यादों के सफ़र प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ है। दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ और आपके डेडिकेशन का सिलसिला भी अब हम शुरू कर चुके हैं और आपके नामों के साथ हम गीत भी जोड़ने जा रहे हैं, आपके पैगाम भी हम जो है आपके दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। अब तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी हाजरा जी, आपने बहुत बार ट्राई की लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और इसके अलावा हमारे छोटे भाई, जी हाँ जी, हमारे भांजे जी चौधरी रुखसार भाई, जी हाँ जी, उन्होंने भी हमें कॉल की, उनकी कॉल भी मिस हो गई, तो माज़रत चाहूँगी आपसे भी। तो आप भी अगर दोबारा ट्राई करना चाहें, अगर आपके पास वक्त हो, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, काम पे होते हैं और अपने जो ब्रेक टाइम पे हमें कॉल करते हैं, अगर आपके पास कोई ब्रेक का कोई टाइम बचा है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और हमें इस बात का अफसोस रहेगा अगर आपसे बात ना हो पाई, लेकिन आप सुन रहे हैं, अपने प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आपने हमें याद किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये प्यारा सा गीत जो है मैं नाम करना चाहूँगी अपने प्यारे से छोटे भाई वाजिद भाई हडर्सफील्ड में। आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप मुझे, मैं जानती हूँ कि आप पंजाबी गीत पसंद करते हैं, थोड़ी देर में आपके लिए पंजाबी का गीत भी मैं ज़रूर लगाऊंगी। फ़िलहाल ये गीत मैंने क्यों करके रखा हुआ है, मौसम के लिहाज से है, आया सावन झूम के। आपके नाम करना चाहूँगी आपकी जानिब से, आपकी तमाम टीम के नाम, आपके तमाम दोस्तों के नाम, आपकी टीम में शामिल हैं जो हैं वो हैं चौधरी फरियाद हैं, तारिक भट्ट हैं, क्यानी मुदस्सर हैं, महबूब इलाही हैं, आमिर शहजाद हैं, परवेज़ खान हैं और चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, महबूब इलाही हैं, तारिक भाई हैं, जुल्फी भाई हैं और हीरा खान जी भी हैं। और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम करना चाहूँगी इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारी प्यारी सी बहना मिस्टर मिसेज हुसैन, आपको भी ये गीत अच्छा लगेगा। समीना जी आपके लिए भी गीत हम थोड़ी देर में लगाते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए।

आया सावन झूम के। जी हाँ जी, ये सावन जो है ये तो हमेशा ही रहता है और मेले भी खूब लगे, ईद के मेले भी लगे हमारे ब्रैडफोर्ड में, बहुत रौनकें रहीं ईद के बाद, जो है वो पार्क वगैरह बिजी रहे, लेकिन सावन ने बहुत कोशिश की खराबी करने की, लेकिन हमने फिर भी बहुत इंजॉय किए मेले को भी और ईद को भी। और सावन के तो हम आदि हो चुके हैं, ये तो बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यहाँ पर और इसके आदि हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने कहा ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है बारिशें तो यहाँ यूके में। तो यकीनन आपने इस गीत को इंजॉय किया होगा, और वैसे तो मौसम का क्या कहना, बदलता ही रहता है लोगों की तरह अपने रंग बदलता है। कभी एक हफ्ता पहले इतनी गर्मी थी कि हम समझे कि ये जी गर्मी आ गई है, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत खुश थे, और लेकिन इस हफ्ते तो फिर से लगता है कि सावन आ गया है और थोड़ी ठंड भी हो गई है। इसी वजह से सभी को, हर घर में किसी को ज़ुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि गर्मियाँ हैं और यूं ही उठ के बाहर गर्मियों के कपड़ों में निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि बाहर ठंड है, तो फिर ठंड हमें जकड़ लेती है। ऐसा ही कुछ मामला हमारे साथ भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत दे और इन चीज़ों के हम आदि हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बात हुई प्यारी सी बहना हाजरा जी आपसे, आप भी प्रोग्राम को सुन रही हैं, बहुत बार आपने कोशिश की लेकिन आखिरकार आपसे बात हो ही गई, अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आप हमेशा प्रोग्राम को सुनती हैं, हमारी हौसला अफजाई करती हैं और हमें अपनी दुआओं से और प्यार से नवाजते हैं, अच्छा लगता है। आप भी हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं, अगर आप ना आए तो हम आपको बहुत मिस करते हैं और फिर पूरा हफ्ता आपकी याद हमें सताती है। आज आपसे बातें हुई, आपका प्यार और आपकी दुआएँ हमने पाई तो हमारे दिल को सुकून आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसा है कि ब्रेक टाइम है, ब्रेक जाने में पड़ते हैं, ब्रेक के फौरन बाद जो गीत आएगा वो लता जी की आवाज़ में है, आप तमाम के लिए होगा, तो सुनते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

ए दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरें गुजारना। जी हाँ जी, लता जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत, सदाबहार गीत आपने सुना, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, बेहद बेहद शुक्रिया आप तमाम का, बहुत अच्छा लगा। आपने प्यारे से छोटे भाई, जी हाँ जी रुखसार भाई, आपसे बात हो रही थी ब्रेक के दौरान, हमेशा की तरह बहुत ही जो कहते हैं ना मीठी ज़ुबान के मालिक और इखलाक से भरपूर होती है आपकी जो बातें होती हैं और उसमें जो दुआएं होती हैं और जो एहतराम और जो इज़्ज़त आप हमें देते हैं उसके लिए हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। और आपसे बात करके हमें वो कहते, आप कहते हैं कि आपको हमसे सीखने को मिलता है, लेकिन हमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आप जो है वो आपका नॉलेज जो है ना वो हमसे भी बहुत ज़्यादा है और आपकी बातें जो है ना उनमें बहुत गहराई होती है और बहुत सच्चाई होती है। और हमेशा आप जिस प्रोग्राम में भी आकर जिस मौजू पर भी बात करते हैं हमेशा हमेशा वो कहते हैं ना 100% बिल्कुल वो परफेक्ट होती है वो बात और बिल्कुल हमारे दिल को भा जाती हैं आपकी बातें भी। और अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रोग्रामों में आकर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत को बढ़ाते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। जल्दी से बढ़ते हैं, एक और बहुत ही खूबसूरत गीत है, ये भी लता जी की आवाज़ में है और इसे मैं नाम करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहन दीपा जी आपके नाम करना चाहूँगी। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आप आई, आपसे बातें हुई, आपसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा हमेशा की तरह। आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया और आप हमेशा अपनी प्यारी प्यारी बहनों को, सादिया जी को, शाजिया जी को, परवीन को और हाजरा जी को हमेशा दुआएं भेजती हैं और उनको आपने जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है, उनके लिए खूबसूरत गीत भी सुनना चाहा है और अपने प्यारे से भांजे नदीम मंसूर के लिए भी और हमारे भाई रुखसार के लिए भी आपने गीत भी सुनना चाहा है और सभी के लिए दुआएं भी भेजी हैं। आपका बेहद बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, हमें दुआओं से नवाजने का और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और जब आती हैं तो आप हमारे कानों में मिठास खोल देती हैं। बहुत ही प्यारी हैं आप, बहुत ही अच्छी हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आप आज मसरूफ़ हैं थोड़ी, इसके बावजूद आपने अपनी बहन को याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आने वाला गीत आप तमाम के लिए होगा और हमारी जानिब से हमारे तमाम सामेन के लिए, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे साथ साथ आप भी इस गीत को इंजॉय करेंगे। जाने न नजर पहचाने जिगर, ये कौन जो दिल पे छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया।

एक बात कहूं ओ जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। लता जी और मुकेश की खूबसूरत आवाजों में बहुत ही खूबसूरत सा दो गाना था जिसे आपने सुना। अब आते हैं, ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको, और इस गीत को मैं नाम करना चाहूँगी हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, दीबा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और इसी गीत को मैं अपने प्यारे से भाई रुखसार भाई आपके नाम भी करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी, महबूब इलाही के नाम करना चाहूँगी, फरियाद ख़ान के नाम करना चाहूँगी, आमिर शहजाद के नाम करना चाहूँगी, हीरा खान जी के नाम, तारिक जुल्फी के नाम, सफ़ीउल्लाह भाई के नाम, तारिक भट्ट के नाम, मुदस्सर कियानी के नाम, और आपके चैम्पियन आपके भाई आपके दोस्त परवेज़ ख़ान के नाम, काशिफ भाई के नाम, कामरान भाई के नाम, शकील के नाम, जहांगीर के नाम, राना नवीद के नाम, और दीपा जी के नाम, नदीम मंसूर के नाम, आपकी जानिब से और हमारी जानिब से आप तमाम दोस्तों के नाम। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा हाजरा जी, मुझे उम्मीद है इस गीत को आप भी इंजॉय करेंगी। ये शाम की तन्हाइयाँ और ऐसे में तेरा गाना,

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 12:46। लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: The Asia Station, Sunrise Radio.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274

0: सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, बहुत ही खूबसूरत आपने सुना हेमंत कुमार और लता जी की आवाज़ों में दो गाना, और आपको अच्छा लगा मिस्टर मिसेस हुसैन, आपने बहुत इंजॉय किया हेमंत कुमार की आवाज़ को, तो ये आपके लिए था। मुझे उम्मीद और यकीन है कि हमारे सामीन ने भी इसे खूब इंजॉय किया होगा।
1: छोड़ दे सजनिया पतंग
0: मेरी छोड़ दे। जी हाँ जी, आपने इंजॉय किया, आपके आप ही के लिए था। आने वाले गीत भी आपके लिए होंगे, अगले घंटे में ज़रूर गीत आपके नाम करेंगे। फिलहाल ये जो आने वाला गीत है इसे हम आपके और मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम करना चाहेंगे। समीना जी आपकी जानिब से हम ये गीत नाम करना चाहेंगे आपकी तमाम टीम के, जिसमें शामिल हैं आशी हैं, सुबिया हैं, नायला हैं, शीला हैं, नौरीन हैं, कौसर है और नसरीन है, और जितने भी आपके सहेलियां इस वक्त आपके साथ हैं उन तमाम के नाम करना चाहूँगी। उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सबको ये गीत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी हमारी प्यारी सी बहना हिना शौकत आपके नाम भी, और आप भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी जानिब से भी तमाम सामीन को, सनराइज़ की तमाम टीम को आपने अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, और आपने शौकत के लिए और इसके अलावा आपने गीत सुनना चाहा इजाज़ और उस्मान भाई के लिए, तो आने वाला गीत आपकी जानिब से उस्मान के लिए होगा और इजाज़ भाई के लिए होगा और शौकत के लिए होगा, और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामेन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे। तो सुनते हैं ये अगला गीत, देखते हैं कि आता है कि ये नहीं, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसे डाउनलोड करने में, तो म्यूज़िक सुनते हैं फिर इस गीत को डाउनलोड करते हैं।

0: हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हिट मूवी से लिया गया हिट सॉन्ग आपने सुना 103.2 FM पे। और अब बारी आती है खबरों की। आप सुनेंगे 1 बजे की इंटरनेशनल न्यूज और मिलेंगे आपसे न्यूज के बाद।
1: 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.

0: मैं रहूं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। अभिजीत जी गा रहे थे। आपने हिट ऑफ द आवर सोना प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है। जी आयनो खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ कि पिछले दो घंटों में जिस तरह आपने हमारा साथ निभाया, इस घंटे में भी आप प्रोग्राम के अख्ताम तक हमारे साथ साथ रहेंगे। आपकी दुआओं का और आपके साथ का बेहद शुक्रिया। आपके साथ साथ ही इस प्रोग्राम का जो है वो मज़ा आता है और ये प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरत और हंसी बन जाता है जब आप हमारे साथ होते हैं। आप सभी को अपने साथ पाकर हमेशा हमें बहुत खुशी होती है और आपकी दुआएं पाकर तो हमारे दिल को सुकून आ जाता है और फिर एक हफ़्ता हमारा आराम से गुजर जाता है। आप साथियों का बेहद शुक्रिया जिनसे हमारी बातें हुई, हमारी मुलाकातें हुई और जो खामोशी से सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया। बहुत से खामोश लिसनर हैं जो कभी कभार फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हम हमेशा आपको सुनते हैं लेकिन फ़ोन नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आराम से सुनिए और गीतों को एंजॉय कीजिए। आपको टाइम बताते हैं और फिर बढ़ते हैं डेडिकेशंस का सिलसिला जो है उसे फिर से दोबारा से शुरू करेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 9 मिनट्स पास्ट 1, 9 मिनट हो चुके हैं 1:00।

सुनरे सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 एफएम पे काउदरडेल और इल्टगिर के इलाकों में आप हमें सुन पाते हैं डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड लीड्स कीथली इल्कली स्किप्टन हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप हमें सुनते हैं और एप्पल ऐप के जरिए और गूगल प्ले स्टोर पे भी आप जाकर हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी आप हमें 24 घंटे सनराइज की नशरियात को सुन सकते हैं शहनाज मंसूर आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपकी हम सफ़र यादों के सफ़र प्रोग्राम में आपकी यादों को ताज़ा करने आपकी यादों को याद करने आपके साथ मिलजुल कर इन पुराने सदाबहार गीतों को एक बार फिर से अपनी यादों के साथ जोड़ने के लिए आते हैं और आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी अपनी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करना उन्हें उजागर करना चंद लम्हों के लिए उन लम्हों में लौट जाना अच्छा लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे साथ साथ हैं हमारे हम सफ़र हैं हमारे साथी हैं आने वाला गीत आप तमाम के लिए होगा और ये गीत खास तौर पर दीपा जी आपके लिए होगा आपकी जानिब से आपकी प्यारी प्यारी बहनों के लिए सादिया जी के लिए शाजिया जी के लिए हाजरा के लिए परवीन के लिए नदीम मंसूर आपके भांजे हैं उनके लिए और आपकी जानिब से रुखसार भाई के लिए भी और तमाम लिसनर्स के लिए भी ये गीत होगा और इसके साथ साथ यही गीत मिसिस कौर हम आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा और यही गीत हम नाम करना चाहेंगे हाजरा जी आपके नाम भी करना चाहेंगे और आपके साथ साथ यही गीत तारिक जुल्फी भाई आपके नाम करना चाहेंगे हीरा खान जी आपके नाम करना चाहेंगे आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और जुमा की मुबारकबाद भी पेश करेंगे आपके दोस्तों में शामिल है तारिक जुल्फी हैं बाबा जानी हैं हीरा खान बाबा जानी है और महबूब इलाही है चौधरी मुजफ्फर हैं अब्दुल कयूम प्राइजिंग हॉल में है वाजिद जो है वो हजसफील में सुन रहे हैं अयूब जहान के नाम भी जावेद मीर भाई के नाम भी चौधरी आसिफ रियासत के नाम सुल्तान भाई महमूद कराची वाले के नाम भी चौधरी फरियाद के नाम सफीउल्लाह भाई के नाम शकील भाई बरले में है उनके नाम नवीद राना भाई के नाम चौधरी वलायत खान के नाम चौधरी फरियाद पाकिस्तान में है उनके नाम तौकीर शाह के नाम तारिक भट्ट के नाम कियानी मुदस्सर भाई के नाम परवेज खान के नाम आमिर शहजाद के नाम महबूब इलाही के नाम और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये गीत करना चाहेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे जी अब बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है

दड़बट जमाना कट भले दिन आवणगे। जी हाँ जी, मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunraysradio.fm पे सुन रहे हैं आप हमें पूरी दुनिया में। कमर्शियल्स के बाद खैर मकदम है आपका जी आई एन और गुड आफ्टरनून कहते हैं आप सभी को। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। आपसे बातें हुई, आपसे मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा। आने वाला गीत जो है वो है मुकेश की आवाज़ में और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी और यही गीत तारिक जुल्फी भाई आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी और वाजिद हरिसफील्ड से आपके नाम भी करना चाहूँगी। इस गीत के बाद एक और पंजाबी का गीत है वाजिद भाई, वो आपके नाम होगा। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपके साथ साथ हमारे सामीन भी इस गीत को भी और आने वाले गीत को भी इंजॉय करेंगे। ये गीत थोड़ा उदास गीत है लेकिन बहुत ही प्यारा, मुकेश की आवाज़ में, दिल मोह लेने वाली आवाज़ में, आपको दिलों के तारों को छू लेने वाली आवाज़ है मुकेश की आवाज़। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को, तू सुने ना सुने। जी हाँ जी, मुकेश भाई को, मुकेश भाई को, मुकेश जी को सुनते हैं।

वफा की आस में हम अपनी जिंदगी हार बैठे, वफा की आस में हम अपनी जिंदगी हार बैठे, जिन्हें अजीज जाना था उन्हीं से चोट खा बैठे। वो बदल गए ऐसे के पहचानना भी मुश्किल हुआ, वो बदल गए ऐसे के पहचानना भी मुश्किल हुआ। हम ख्वामख्वा उनकी बेरुखी को अपनी तकदीर मान बैठे। अब शिकवा करें भी तो भला किस जुबान से करें, अब शिकवा करें भी तो भला किस जुबान से करें, दिल लगाने का गुनाह तो हम खुद ही कर बैठे।

मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को दर्द के साज को, तू सुने या ना सुने। मुकेश की मत भरी आवाज में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। अब आते हैं लालचंद यमला जट जी को सुनते हैं, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी वाजिद भाई आपके नाम करना चाहूँगी, अजीत कौर बहना आपके नाम करना चाहूँगी, मिसिस कौर आपके नाम करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ हमारी प्यारी सी बहना अजीत कौर बहना आप आज आपकी तबीयत कुछ बेहतर होगी, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी, कल आपसे बात हुई थी, तो दुआएं हैं दे रहा हूँ आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और फिर आप हंसती मुस्कुराती हमसे बातें करें और आकर हमारे साथ हंसी मजाक करें, हमें आपकी हंसी का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जो कि हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। जी हाँ जी, वाजिद भाई हरिस्फील में ये गीत आपके लिए है और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए, और आपके साथ साथ यही गीत हम हीरा खान जी आपके नाम करना चाहेंगे और आपकी तमाम टीम के नाम, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपकी टीम को भी अच्छा लगेगा। और महबूब इलाही भाई, माजर चाहती हूँ आपने दो बार कॉल की लेकिन आपकी कॉल मिस होगी, उम्मीद करती हूँ इस गीत को आप भी इंजॉय करेंगे। तेरे ने करारा मैनु पटिया, दस मैं की प्यार विचो खटिया। रुखसार भाई आपके लिए भी ये गीत।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, कैसा जादू फेरा ओ साजना। बहुत ही खूबसूरत शौक चंचल सा गीत था जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। अब आते हैं एक और खूबसूरत सा गीत आपके नाम करते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और ये गीत सुनवाना चाहूँगी हिना शौकत आपके नाम, एजाज भाई आपके नाम, उस्मान भाई आपके नाम, मिस्टर मिसेस हुसैन आपके नाम करना चाहूँगी, नसरीन आपकी जानिब से, फरजाना के लिए, शकीला के लिए, नौरिन के लिए और रुबीना के लिए, और नायला हैं आपके साथ साथ, और आबी हैं, आशी हैं, रुखसाना हैं, शीला है, इन तमाम सहेलियों के नाम ये प्यारा सा गीत। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, रुखसार भाई आपके नाम, वाजिद भाई आपके नाम, तारिक जोफी भाई आपके नाम, हीरा खान जी आपके नाम,
1: मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला,
0: अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम भी करते हैं।

ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, नगर हो यकीन तो कभी आजमा ले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। हाजरा जी, आपको बहुत अच्छा लगा, ये आपका मनपसंद गीत है, आपके नाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल का। और अब लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:44 और हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
2: 24 hours a day. अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस. 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है. खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं. महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल. बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल. अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स.

अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीठी आवाज़ नाहिद अख्तर की आवाज़ में ये प्यारा सा कलाम आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत पैगाम था। अगर समझने वाले समझ गए होंगे कि जियो और जीने दो, बस यही मकसद था इस गीत का और यकीनन आपने इंजॉय किया होगा। बहुत अरसा के बाद नाहिद अख्तर की आवाज़ सुनने को मिली, बहुत इंजॉय किया मैंने इस गीत को, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। अब हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया, हमारे सफ़र को हसीन बनाया, हमारे साथ साथ हमारे हम सफ़र रहे 11 बजे से लेकर अब तक। आप तमाम का बेहद बेहद शुक्रिया, आपके साथ का, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं अपने साथ लेकर जा रहे हैं और ढेरों दुआएं आपके लिए छोड़े जाते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हमेशा अपनों के साथ रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। हर दिन आपके लिए खुशियों भरा हो और रहमतों और बरकतों का नज़ूल आप पे अल्लाह पाक का नाजिल होता रहे। जिन्होंने भी वक्त निकाला अपने कीमती वक्त से हमें चंद लम्हे नवाजे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़ासतौर पर अपने प्यारे से भाई अब्दुल क्यूम भाई, आपका तारिक जुल्फी भाई, आपका हीरा खान जी, आपका हाजर जी, आपसे भी दो बार बात हुई, बहुत अच्छा लगा। वाजिद भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, हीरा खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीबा जी की भी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनी बहुत अच्छा लगा, आपका भी बेहद शुक्रिया। महबूब इलाही आपकी कॉल मिस होगी जिसके लिए माजत चाहती हूँ। रुखसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपके खुलूस का। और हमारे प्यारी सी बहना हाजरा जी, आपसे भी बातें हुई बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी हमेशा साथ निभाती हैं और अपने प्यार और दुआ से हमें नवाजते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी समीना जी आपका भी, हैना जी आपका भी, और क्या नाम है, जी हाँ जी, मिस्टर मिसेस हुसैन आपका भी, आपके मैसेजेस भी मौसूल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया यादाबरी का, साथ निभाने का, हौसला बढ़ाने का और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, दुआओं का और प्यार का शुक्रिया। फिर मिलेंगे ज़िंदगी ने वफा की तो अगले हफ्ते आपसे। रिश्ते सलामत रहें, यादें बाकी रहें तो मुलाकातें होती रहेंगी यादों के सफ़र में। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे, अगली मुलाकात तक आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान। Bye for now. Take care. Khuda Hafiz. And good afternoon. Have a lovely weekend and enjoy the week. And enjoy the mausam. Allah Hafiz.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला सिर्फ 2 पौंड ना। कान सलाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो, केड़ी गली केड़ा पता? चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4 8 935।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा? केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना, कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

कहर पैने ने वैरियां उत्ते एक दिन साड़ियां सबरां दे एक दूजे वल मूह ना रखे एना साड़ियां गबरां दे एथे नहीं ते हशर दिहाड़े सजणां गल्लां होणगियां नक्शे आप वहाणे ने मैं रब नूं तेरिया जबरां दे सादिक इको नुक्ते पिछे महरम मुजरम बनिया वा मतलब समझ के मैं की करने इन जेरां

0: Iconic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01 274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरडेर के इलाके में और इर्द गिर्द के इलाके में, और आप के जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 24 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफे हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाएं। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सकें आपके साथ साथ।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: तेरी गलियां
3: घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्हां स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला है, सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड, छापां ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
5: 24 hours a day, Sunrise Radio. It's a classic hit. Flashback, flashback, as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

गीतों भरा प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं। और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

फिर से आपका खैर मकदम है। जी आयान खुश आमदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
0: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
0: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आपसे मुखातब आपका मेहसबान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम सनराइज रेडियो के ऊपर हर हफ्ते जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम 100.6 एफएम अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर और आप इसको इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया में सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm और इसी तरीके से www.sunrise.radio। हमारा ये वीकली सेशन हर जुमा की शाम को और इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारी स्टूडियो का नंबर 01274 306666। चाहे कोई इस्लामी मसला हो या हालात हाजरा के ऊपर कोई तबसरा हो या इसी तरीके से लोकल हालात हों या मुल्की हालात हों या बैनुल अक्वामी हालात हों, इन तमाम के ऊपर अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कोई मैसेज आप दूसरों को तक पहुंचाना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। आप ऑन एयर आ सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आलिम ऑन एयर कई सालों से ये जारी है। आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और इस सेशन के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं, इस मजलिस के अंदर आप हिस्सा ले सकते हैं। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज our weekly session on Sunrise Radio every Friday evenings between 8 o'clock and 9 o'clock UK time. And of course, those people listening across the world, they can schedule according to their times. Sunrise Radio 103.2 FM, 100.6 FM across the whole of West Yorkshire. And you can listen it throughout the world on the internet on www.sunriseradio.fm or www.sunrise.radio. And you're most welcome to take part in this session. The number for our studio is 01274 306666, and those people who would like to ring from abroad, please remember to add on the extension number or the extension which is 0044 for UK. I normally do remind you to avoid ringing during our commercial breaks, because at that time I can't take your call, we can't hear you, you can't hear us, and the rest of the listeners can't hear us because of the commercial break. So that's why, please remember, keep that in mind and do ring us, do call, even if it's something that's beneficial to the rest of our listeners. We'd like to listen to what you've got to say. Agar aap phone in karna chahte hain, agar se koi aham baat ho ya koi achhi baat ho jo aap hamare baki samayin ke saath share karna chahte hain, to you're most welcome. The number for our studio is 01274 306666. قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اور اور اس کے اندر اللہ رب العزت ایک فتح کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جبکہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے تمہیں ایک بڑی فتح نصیب ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج, جوق در جوق دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی. تھری تھنگز اللہ سبحانہ و تعالی ہیز مینشنڈ ان سورۃ الفتح, the surah, the victory. And Allah subhanahu wa ta'ala says, when you see the assistance of Allah right before your eyes, in other words, otherwise we all know that the assistance of Allah is always with us. Sometimes we realize it, most of the time we don't. But when you see it visually and you experience it firsthand, اذا جاء نصر الله, when the nasr of Allah, when the assistance and the special help from Allah arrives, والفتح, and a clear victory you see before you, you see right in front of you a clear victory. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ایک فتح مبین, ایک فتح نصیب کرتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, and then you see that people in huge army lords are entering the deen of Allah, the deen of Islam. When you see these three major signs, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, ایسے موقعوں کی اوپر آپ کو تسبیح کرنی ہے اللہ کی, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اور اللہ سے استغفار کرنا ہے, مغفرت طلب کرنی ہے. So then you begin to glorify Allah, you praise Allah, that's the first thing. And the second thing is, you ask for forgiveness of your mistakes, of your sins, of your disobedience, of your mishaps. وَاسْتَغْإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور مخلوق کی طرف پوری توجہ دینے والے ہیں. Allah is the one who fully accepts repentance and is the one that will give you the full attention. اب آگے بات چلانے سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرتے جاؤں حالات حاضرہ کے لحاظ سے, اور وہ یہ ہے کہ حج کے ایام اب ختم ہو چکے ہیں اور حجاج اکرام اب واپس آ رہے ہیں اپنے حج سے. The season of Hajj has completed. Those people who had gone to perform the Hajj, the pilgrimage, the sacred pilgrimage, they've completed their a'mal, their good deeds, their rituals, and most of them are returning back in these days now, in dinon ke andar. Now one of the very important things I would like to bring your attention to, aapki tawajjuh dilana chahta hoon, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ حج پر گئے ہیں وہ اللہ کے مہمان, they are the guests of Rahman, of Allah. They have sacrificed their luxuries, اپنی جو راحت و آرام ہے اس کو انہوں نے قربان کیا ہوا تھا, کیونکہ انسان اپنے گھر سے باہر ہو تو چاہے جتنے بھی آرام کا ہوٹل ہو, جتنے بھی آرام کے مقام ہوں, جتنے بھی بہترین لذیذ کھانے ہوں, لیکن گھر کے اندر انسان اپنے مقام کے اوپر جو انسان کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے, वो कहीं नहीं होता। और फिर दूसरी बात कि सफ़र जो है, चाहे वो जहाज़ का सफ़र हो, एयर का सफ़र हो, चाहे वो ट्रेन का सफ़र हो, गाड़ी का सफ़र हो, बस का सफ़र हो, चलने फिरने का सफ़र हो, जहाँ कहीं भी सफ़र जो होता है वो हमेशा तकलीफ़ उसके अंदर होती है। बाज़ औक़ात इंसान को तकलीफ़ ज़्यादा हो, बाज़ औक़ात कम हो, बाज़ औक़ात ज़्यादा महसूस नहीं होती, बाज़ औक़ात कम महसूस होती है वगैरह। समटाइम्स यू नोटिस द फटीग, समटाइम्स यू डोंट, बिकॉज अ पर्सन व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर द कम्फर्ट ऑफ देयर होम, देयर ओन होम, इवन इफ यू आर इन अ फाइव स्टार होटल, एंड आई बिलीव नाउअडेज़ यू कैन इवन गेट सेवन स्टार होटल्स, so even if you are in a five star hotel with the luxurious comforts of those hotels and the rooms and the facilities, and the food could be the tastiest, but the comfort of a person's home can never be achieved anywhere else. For a short period you may feel the thrill, but the initial comfort, that can only be achieved in a person's own home. And I use specifically home because there's a difference between a house and a home. You can be living in a house, it may not be your home, but you may be living in a shed or in a cellar or a basement or in a flat, but that's your home, that's where you feel safe. So the point I was trying to make, jo maqsad main kehna chahta tha, was that these people who have gone on Hajj and now they are on the way back, they've been through a lot of sacrifice, fatigued, out of the comfort of their homes. Khane peene ke jo aukaat hain wo unke alag ho gaye, sone ke aukaat alag ho gaye, the patterns for their sleep, their rest, their movement is all different from what they are used to and what they have been placed into, and the habits of their life have changed. So these people have been there for almost 3 weeks, 4 weeks, and when they're coming back, naturally, because they are the guests of Allah, then they need to be given that appreciation and that welcoming. This is the point I would like to bring your attention to. ये वो चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो लोग जो वहाँ से आए हुए हैं हुज्जाज इकराम, तो उनकी इज्जत एहतराम करना ज़रूरी है हमारे ऊपर, उनके साथ बेहतरीन अंदाज के अंदर पेश आना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि वापस आकर वो महसूस करें, so that they can feel appreciated in society, that they, although they have completed this action and this ibadat for themselves primarily, but the community, the society, the people, the Muslims around them, they actually appreciate them. Amal to unhone apne liye kiye hain, wo hajj jo unhone ada kiya ya umrah jo unhone ada wahan kiya hoga ya wahan jo duaein unhone ada ki hongi, quran kareem ki tilawat ki hogi, वहाँ कुर्बानी, चूँकि हज का मौका है, वहाँ जो कुर्बानी उन्होंने अदा की होगी, जो सदका खैरात उन्होंने दिया, वो तमाम का तमाम उनको सवाब ज़रूर मिलेगा और उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत के लिए किया है। लेकिन इंसान होने के नाते से एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए ज़रूरी है कि सोसाइटी भी उस चीज़ की इज्जत करे। उसमें दो फ़ायदे होते हैं, एक तो जो जाने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, those people who come from Hajj, to appreciate them, to visit them, to ask them for du'as, two great benefits. One is that they themselves feel appreciated, but on the other hand, in society, these good deeds, their status and ranking is elevated and is looked upon, so that those people around notice that those who've come back from Hajj are valued, and they feel they want to do things that a person is valued by. Duniya ke andar jis cheez ki izzat hoti hai, jis cheez ka ehtram kiya jata hai, log usko karne ki koshish karte hain, jis cheez ki wajah se logon ko izzat milti hai, तो बाकी जो लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो इंसान की तबीयत इस तरह है कि इंसान चाहता है कि मैं भी वो काम करूं क्योंकि उसकी वजह से इनकी इज्जत हुई है तो मेरी भी इज्जत होगी। That's why when you appreciate somebody, so on the one hand you are appreciating that individual, but on the other hand you are actually elevating the status of that dini action or that pilgrimage or the good deeds. You actually are elevating the status of those things in the eyes of the ummah. उस चीज की इज्जत आप कर रहे हैं, उसका दर्जा बुलंद कर रहे हैं लोगों की नजरों के अंदर. And this is one of the weaknesses that our Muslim community has faced, and that is that when we have come across our everyday actions, we appreciate those again and again to such an extent that people begin to value those by listening to them, of course, listening to the praise of those things, उन चीज़ों की तारीफ सुन सुनकर लोगों के जहन के अंदर उन चीज़ों की बड़ाई दिल के अंदर आ गई, तो अब लोग वो काम करना चाहते हैं. और जो दीनी दीन के जो आमाल हैं उनकी तारीफ बहुत कम हो गई है और उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती और उनको बार बार उनका तज़किरा चूँकि नहीं होता, तो उसका नतीजा ये होता है कि लोगों की नज़रों से आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते होते होते एक वक्त आता है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं होती. कुछ अरसा पहले मेरा जब बयान था एक मस्जिद के अंदर और उस बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद उन्होंने इलाके वालों के अंदर ऐलान भी किया कि फ़लां दिन दावत होगी, कुछ लोग आए, कुछ बैठे, जो करीबी रिश्तेदार थे वो आए, महल्ले वाले कुछ लोग बैठे, बयान हुआ, उस बच्चे ने कुरान करीम की आखिरी जो सूरतें थीं उनकी तिलावत की, तिलावत करने के बाद उसके वालिदैन ने, उसके जो भाई वगैरह हैं उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त किया था बतलाने के लिए कि हमें बड़ी खुशी है. आमतौर पर खुशी का मौका होता है तो इंसान खुशी की वजह से लोगों को दावत देता है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत मुझे दी हुई है. अल्लाह हैज़ ग्रांटेड अस विद सच अ ग्रेट नेमा दैट दिस यंगस्टर हैज़ मेमोराइज्ड द होल ऑफ द कुरान ऑफ बाय हार्ट and can recite it. So on the day of this celebration, the ceremony, they had asked everybody from their relatives, friends in the area. So the close relatives had arrived. I was giving a speech there. And some of the people from the local area. After that there was food. The family had given food as a mark of happiness and pleasure that Allah has granted us this great ni'mah in our family. But what I noticed was that other than the very close relatives who felt compelled to come, that if we don't go then the parents would feel upset. Some of them, they must have come with a genuine appreciation, but some of them, you know, they come because they are compelled. Aaj agar hum nahi gaye to kal hamare mauke ke upar nahi aayenge, ya aaj agar hum nahi gaye to is wajah se baaz jo kareebi rishtedar hote hain ऐसे मौक़ों के ऊपर वैसे ही आ जाते हैं. ये दोस्त और अहबाब के अब हमें दावत जब दी है, चाहे वो शादी की दावत हो या कोई ख़त्म हो या कोई ऐसा अच्छा मौका हो, तो दिल तो नहीं चाहता पास लोगों का, लेकिन वैसे ही आ जाते हैं कि अगर नहीं आए तो ये गिला करेंगे, मुझे याद दिलाएंगे कि हम आपके हर मौके के ऊपर आए, हमारे इस मौके के ऊपर आप नहीं आए, या हमारी इसके ऊपर नाराज़गी बढ़ जाएगी, या फ्यूचर के अंदर ये हमारे किसी इवेंट के ऊपर नहीं आएंगे, तो इसलिए दिल तो नहीं चाहता लेकिन चलो चल ही जाते हैं. वी डोंट वॉन्ट टू गो, सम पीपल फील, सम पीपल से दिस, वी डोंट वॉन्ट टू गो, वी डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली स्पेंड टाइम देयर, बट इफ वी डोंट गो दे विल गेट अपसेट. सो जस्ट रादर देन कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर फ्यूचर कंफ्यूजन ब्रेकेज ऑफ रिलेशनशिप्स, लेट्स जस्ट गो एंड कट इट शॉर्ट एंड कम बैक. So they're not there because they want to be there, तो उसकी उसके ऊपर मैंने बातचीत की कि देखो इतना बड़ा अहम काम कि एक यंगस्टर ने कुरान करीम को हिफ्ज किया और उसके पीछे उस्ताज की 3-4 साल मेहनत, उनके वालिदैन की 3-4 साल हर दिन उसको ले आना मस्जिद, वापस आना, कभी उसके दिल पर आएगी कि आज सीखना है, कभी नहीं सीखना है, कभी करना है नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद और फिर बच्चे की इतनी बड़ी मेहनत के हर दिन उधर आना, कुरान करीम को याद करना, फिर उसका दौर करना, फिर उस्ताज को सुनाना, कभी उसका दिल है कि बच्चों के साथ चलो मैं वक्त गुजार कर खेल लूँ, लेकिन नहीं मैं उधर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का वक्त है, तो उसके अंदर मदरसे वालों की बड़ी मेहनत, उस्ताजों की भी मेहनत, बच्चे की भी मेहनत, वालिदैन की भी मेहनत, महल्ले वालों की भी मेहनत, क्योंकि आखिर वो भी इनकरेज करते हैं, और जब इतनी मेहनत के बाद आफ्टर ऑल दैट एफर्ट एक यंगस्टर तैयार होता है, एक यंगस्टर तैयार होता है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए थोड़े से लोग 10-15-20-30 लोग वहां इकट्ठे होते हैं। वही अगर कुछ और चीज होती तो आप देखते कि इतनी बड़ी सेलिब्रेशन बनाते कि पूरे मोहल्ले वाले आते हैं, वहाँ बलून्स लगाते हैं, वहाँ उसके घर के सामने पत्ते डालते हैं, पत्ते क्या करते हैं, क्या कुछ होता है, ऑल दीज थिंग्स। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो हर एक कहता भाई आपको आपस में बातचीत करते वाले बड़े जो होते हैं तो कहते आपको, मुझे कहते यंगस्टरों को कहते आपको या तो टीचर बनने हैं या आपको डॉक्टर बनने हैं या आपको वकील बनने हैं या आपको ये चीज़ बनने हैं, और उसको कहते कि आपको ये भी बनना है, क्योंकि इन लोगों की, हालांकि ये जितने भी प्रोफेशंस हैं, सब जितने भी प्रोफेशंस वी रिस्पेक्ट एवरी सिंगल वन, लेकिन चूंकि कम्युनिटी के अंदर जहनीत ये बन गई थी कि इस प्रोफेशन की हर एक बड़ी इज्जत करता था और वो बड़ी रोब के साथ पेश आते, तो चूंकि रोब के साथ पेश आते तो लोगों के जहन के अंदर ये होता कि ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा ही अहम है, हम अपने औलाद को भी यही प्रोफेशन करवाएंगे। तो उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि सोसाइटी के अंदर बार बार उसकी तारीफ करते, बार बार उसकी तारीफ करते, बार बार उसकी तारीफ करते। तो इस तमाम से मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की आप सोसाइटी के अंदर ज़्यादा तारीफ करेंगे और लोगों को और लोग जो हैं उसकी वैल्यू दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। आप अपने इलाके के अंदर देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर दूसरों की खिदमत करते हैं, बहुत कम होंगे। क्यों? इसलिए कि उस चीज की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। बाज होते हैं, आई वाज सेइंग दैट द मोर यू शो अप्रिसिएशन एंड वैल्यू फॉर एन एक्शन और अ सर्टन थिंग और अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, द मोर यू शो इट एंड द मोर पीपल शो इट, ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स वैल्यूड इन पीपल्स आईज। And on the contrary, the more the lack of attention towards any certain aspect of life or any profession or any action, lack of attention slowly devalues that thing in the eyes of people. लोगों की नजरों के अंदर उसकी इज्जत वो कम हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है, अगरचे वो बड़ी कीमती चीज़ हो, इवन इफ इट इज समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, बट बाय नॉट अप्रिशिएटिंग इट एंड नॉट वैल्यूइंग इट एंड नॉट शोइंग वैल्यू टू इट, इट बिकम्स डीवैल्यूड इन द आईज ऑफ पीपल, एंड इट्स सच अ विशियस साइकिल दैट द मोर इट इज डीवैल्यूड the less attention, and the less attention the more devalued, and it comes into a vicious cycle of devaluation to such an extent that certain great actions, great professions valuable assets of life are ignored altogether. इसलिए बात वापस आऊं इसकी तरफ कि जो हुज्जाज इकराम है जब वापस आए तो हम अपने कम्युनिटी के अंदर एक किस्म का माहौल बना लें. We need to make an atmosphere in our communities where those people who come back from Hajj, we show enthusiasm and excitement towards them. And this is something that the Prophet, peace be upon him, he was alluding to when he mentioned that those people who come back from those blessed places, their du'as are accepted for 40 days, for X many days. He was trying to instill in the people that when those people have completed such a great pilgrimage, such a great action, then for the next 40 days, you go to them and keep asking them that remember me in your dua. So indirectly, psychologically, the Prophet is asking you to keep a connection with those people. And when you go to them and you say, can you make du'as for me? Your du'as are accepted. They naturally feel valued and appreciated. The appreciation will skyrocket when you have 10 people coming to you and saying, Haji Saab, you've come from this auspicious journey. Aap itni barkat wali, itni aham ibadat ke baad wapas aa rahe hain. तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, आपकी दुआएं कबूल होती हैं. Another person comes to you and says, your du'as have been accepted, you've been on a blessed journey, barakat wali, you've come from the mercy of Allah, Allah ki rahmat se aap wapas aaye hain, aap mujhe apni duaon mein. Imagine if 10 to 20 people from your area, from your vicinity, from your people came and said that, you will feel elated, aapko itni badi khushi hogi. और फिर एक आदमी जब कहा, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, वो आपके पास मुलाकात के लिए आती है. When people visualize this, इंसान के दिल में होता है कि मैं भी जब हज पर जाऊंगा, वापस आऊंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे. It won't be that you've performed such a great ibadat, you'll come back, you land from your from the airport, come home in the vehicle, just crash out at home because you're tired. And next day is back to normal. You're going to work or you're carrying on with your daily life. If somebody sees you, okay, Jazakallah Haji Sahab, it was nice, keep us in your dua, bas finish. No, you want to make it special for these people. Aise karte hain. Waqt ho gaya hai kaafi break ka, to break ki taraf jaate hain. Lekin ye ek aham paigham hai. Agar aap bhi iske bare mein kuch kehna chahte hain या और किसी टॉपिक के बारे में तो यू मोस्ट वेलकम. हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666. इफ़ यू लाइक टू स्पीक अबाउट दिस, इफ़ यू लाइक टू गिव सम इनपुट, इफ़ यू हैव एन ओपिनियन, हाउ कैन वी रिस्पेक्ट दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम हज, और शैल वी इवन रिस्पेक्ट देम और गो टू देम, और डू यू फील दैट दिस इज देयर एक्चुअली इबादत, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द सोसाइटी. यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. You might have a reason for it. Aap kyun ho sakte. Lekin this is how Sharia presents it to us. So you're most welcome. If you've had any experiences of people coming to you when you came back from Hajj, or your family came from Hajj, or your friends, colleagues, what was your experience? You're most welcome. Aap on the air aa sakte hain. Hamari studio ka number 01274306666. I am your host Maulana Fazildad. मैं हूँ आपका मेहजबान मौलाना फजलदाद और ये है सनराइज रेडियो. फिलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: रिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान मौलाना फजलदाद। और हमारा ये प्रोग्राम हर हफ्ते जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव होता है। ये मोस्ट वेलकम, आप ट्यून इन कर सकते हैं। और जो लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर सुन रहे हैं तो यूके टाइम के मुताबिक अपना टाइम मिला लें और उसके मुताबिक हमारा ये प्रोग्राम लाइव हुआ करता है। इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274-306666, 01274-306666। चाहे इस मौजू के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, या कोई और अहम बात, या कोई भी फ़ायदा मंद बात जो आप हमारे सामेईन के साथ शेयर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई मसला पूछना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। 01274-306666। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद। दिस इज़ सनराइज रेडियो 103.2 FM, 100.6 FM अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर। और पूरी दुनिया में आप इंटरनेट के ऊपर इसको सुन सकते हैं। अच्छा, वापस आऊँ अपनी बात पर। और मौजू चल रहा था कि जो हुज्जाज इकराम आते हैं तो उनके साथ मुलाकात करना, उनकी इज्जत और उनकी हौसला अफजाई करना, ये हमारे लिए एज अ कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी वैल्यू देम, अप्रीशिएट देम, and we help to build their self-esteem upon the good deeds that they have performed. I understand that those are things that they have done for themselves. Lekin in dunya, we are living as a society. We are not in an individualistic world. Hum apni infiradi dunya ke andar nahi reh rahe, balki dunya ke andar hum insaan hone ke nate se dusron ke bhi जो ज़रूरियात हैं, दूसरे के जो एहसासात हैं, दूसरे के जो ज़रूरियात हैं, उनकी तरफ इंसान को भी तवज्जो देनी पड़ती है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टेक इनटू कंसिडरेशन इन आवर सोसाइटी द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, द नीड्स ऑफ अदर पीपल, एलिवेटिंग द इंटीरियर फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल। That's part of society as well. We shouldn't be thinking of ourselves only. And that's one of the great downfalls that we are beginning to go down this slippery slope of myself, me and myself only. अपनी ही जात के बारे में ही हम सोचते हैं कि इसमें अगर मेरे लिए फ़ायदा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। ये एक किस्म की ज़हनियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और ये बड़ी ही ख़तरनाक है। जब तक किसी सोसाइटी के अंदर भी, जब तक वो दूसरों के एहसासात का, दूसरों के ज़रूरियात का, दूसरे के फीलिंग्स का, इमोशंस का जब तक हम ख्याल रखेंगे तो उस वक़्त तक सोसाइटी हमारी कामयाब रहेगी। और ये वो चीज़ें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इब्तिदा ही से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भाईचारगी और इन चीज़ों को, सोसाइटी को बनाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों की तरफ बड़ी ही तवज्जो दी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू ही से। और इसी वजह से अगर आप देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की वजह से सहाबा इकराम का आपस के अंदर इतना प्यार मोहब्बत और इतना ज़्यादा ताल्लुक हो गया था कि ख़ुद को भूखे रखते ताकि दूसरा सामने वाला वो खाना खा सके। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बिल्ट अ सोसाइटी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग विद द फैंटास्टिक ब्यूटिफुल अखलाक, द कैरेक्टर्स ही बिल्ट, दैट दे बिगन टू look after each other to such an extent that they would stay hungry and their own food they would give it to somebody else, even though when they were hungry and they needed the food. Hundreds of examples of that nature. they would be thirsty, and the other person, they would pass on the drink to them, a drink of water, they would pass on the liquids and the water to that other person, saying, I am thirsty, I am in need of water, but so are you, I'm going to pass it over to you. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam ne is kisam ka mahol, is andaaz ke andar banaya, is andaaz ke andar, ke aap sallallahu alayhi wa sallam ne इस अंदाज में तरबियत की कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, मर्द हों या औरतें हों, हर एक कोशिश करता कि दूसरे को आराम पहुंचे अगर जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो जाए. I want the other person to be in comfort, even if that means that I have to go out of my comfort zone. And the more you look at the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the nurturing of the sahaba, the more we notice this great quality that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam built on selflessness. Isi wajah se main ye keh raha tha ki hujjaj ikram jab aate hain to hum ye sirf na sochein ki main apni hifazat karta hoon ki chalo kal ye meri baat cheet nahi karenge ya main inki isliye देख इनका इसलिए देखभाल करता हूं कि या इनकी मुलाकात करता हूं कि बार-बार आमने सामने होगा. नहीं नहीं, मैं इसलिए मुलाकात के लिए जाता हूं कि मेरा रब राजी होगा. सबसे पहली बात, आई एम गोइंग टू मीट दीस हुज्जाज फर्स्टली बिकॉज़ माय अल्लाह इज गोइंग टू बी प्लीज्ड विद मी, एंड द सेकंड थिंग इज दैट दिस विल एनकरेज दिस पर्सन, इट विल मेक देम फील मच बेटर. They will feel much, much better. They will feel appreciated after their ibadah. The third thing is, it will increase the value of the hajj, etc., or these ibadat in the eyes of the people, because at the moment, people don't value it as much. Log iski itni izzat unke dilon ke andar nahi hai jitni honi chahiye thi. मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं. तो मतलब ये है कि हम इसको सोसाइटी के तौर पर इस अंदाज के अंदर हम इसका सोचें तो इंशाल्लाह उसका असर ज़रूर होगा. हाँ, अगली बात ज़रूर मैं ये अर्ज़ करते जाऊँ कि चाहे वो हुज्जाज के लिए हो या चाहे कोई और किसी सफ़र से वापस आए, मैं ज़रूर एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि जिस दिन वो आए उसी दिन उनकी मुलाकात करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उस दिन वो वापस आए हैं वो थकावट के साथ आए हुए हैं. मेरा दस्तूर आम तौर पर ये होता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन जाओ और उनके साथ मुलाकात करो. वजह, चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी हॉलिडे से या किधर से आए हुए हैं, किसी ख़ास मौके के ऊपर आए हुए हैं, हज से, उम्रा से, किसी सफ़र से, क्योंकि उस दिन आते ही याद रखना उनकी 6-7 घंटे की फ़्लाइट, और वो फ़्लाइट के ऊपर चढ़ने से 3-4 घंटे पहले, 2-1 घंटे पहले वो एयरपोर्ट पर थे, और फिर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले 3-4 घंटे वो घर से निकले, और फिर यहाँ लैंड होते हुए एयरपोर्ट से निकलते हुए इनका घंटा लगा, फिर एयरपोर्ट से घर तक, तो ये कुल बाज़ुकात 12-15 घंटे बन जाते हैं. Sometimes it goes up to 12, 13, 14, 15 hours of continuous fatigue, because those people who've traveled for 7 or 8 hours on an aeroplane, remember that is not the full journey. Pre going onto the plane, pre boarding the plane, they may have been at the airport for almost 2 to 3 hours. So with this 8, add the 3 hours on, and then from their home to the airport, it must have been some distance, and in fact pre to that they must have been preparing. So you've got about 11 to 12 hours straight away, and then when they come off the airplane at the airport here for about an hour, and then the distance to go home. So this person or this group of people have been traveling for almost 14 to 15 hours, maybe sometimes even longer, especially if there was a stoppage in between if the flights were changed or if the flights were redirected or if they had to change an aeroplane, if there was transit on any of these, it could extend the time. So these people who have not slept properly, who are fatigued, who have been sitting in one chair or one seat in an aeroplane for almost 6 to 7 hours, and now they need their rest, as soon as they get home, if they have visitor after visitor after visitor, it isn't the optimal time for you to be sitting with them. Sabse behtareen tareeka, the best time is, let them have their rest. Let them eat and drink and have a good rest, good sleep, and then the next day, when they are fully fresh, refreshed, ab unko maza bhi aayega, aapko bhi maza aayega, baithne ka bhi, unko bhi appreciation hogi. To khair kehne ka maksad, these are some of the things that don't just think about yourself, that I need to get this over and done with. Ye mujhe kaam jaldi unki mulaqat karke wapas aa jana hai. Agle ka bhi khyal rakhna hai ki kahin mere udhar jaane ki wajah se us dusre shakhs ko takleef na ho. That by me going there and trying to visit this person, it could be that I may be burdening that person. The person is fatigued, is tired, is hungry, is feeling sleepy, and then because of my respect that I've come to visit this person, they have to sit down for the next 15, 20 minutes, half an hour, and then another person and another person coming to visit them. So, isliye in cheezon ka khayal rakhna zaruri hai. फिलहाल ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर आखिरी एक मुख्तसर पैगाम देकर इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां.
4: मैं जानती हूं, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहां है?
4: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014. Sophie Jewelers.